0: समाई
1: तुम ते भिन्न नहीं किछु होए
0: आपन सू सब जगत करोए
1: जा कहो प्रभ जियो आप बुझाए
0: सचनाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत का बेता
0: नानक सब श्रेष्ठ का जेता
1: जी अजंत्र सबता का हाथ
0: दीन दयाल नाथ नाथ
1: जिस राखा तिस कोई न मारा
0: जिस मनो बिसारा
1: तिस ता जबर का

0: बंद करे प्रभ गज
1: प्रगटे गोपाल महात के माथे
0: नानक उदले तिन के साथी
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कृपा प्रभाव।

तीर्थ हमरी रह रास रहाओ। अर्जन के बड़ भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्तस है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिक जीवे त्रिक जी वास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तौर मस्तक लिखे अल खास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। रागुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा आहर हर जीव परया। सैल पत्थर मैं जंत उपाय, ताकर रिजक आगे कर धरिया।

प्रत्पर हमरे दुष्ट सभ्य तुम काबहु आप हादय मोह बचाबहु सुखी बसाई मोर परिवार सेवक सिख सभ करतारा मोर अच्छा निज कर दाय करियाए सब बैरन कौ आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाद मुझे अबरिया मरण काल का त्रास नवरिय हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा।

दोहरा काल पुरुष की देह मोह कोटक बिसन महेशो कोटिंद्र ब्रह्म कितेर अफसस क्रोध जलेश दोहरा

आदि बेआचम सकन कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन तय प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहु लिहु सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तारु तद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओ रघुवर कथा प्रसंग साधु साधु जानू नहीं बास बाद बेबादो ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

जिससे मृत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

उस ते चौगुण कर निहाल नानक साहिब सदा दयाल होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सचे पाते मल जा

गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गाव है इंद एदा सुन बैठे देवत्यां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सारा जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मनमोहना सुरगा मच पाए आले गावन रत्नो पाए तेरे आठ सर तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तहारे सेई तुद नो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई हैपी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम ना करना जाई सो पाते साहो साहा पाते साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिस आदेश आद नील नद अनाहत जुग जुगे कोवेश भुक्त ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध ब्रासाद संजोग विजोग दुए कार चलाव है लेखे आव है भाग आदेश तिस आदेश आद नील नद अनाहत जुगे कोवेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर नावै बहुता एहो विडाण आदेश तिस आदेश आद नील नद अनाहत जुगे कोवेश आसना लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साचिकार आदेश तिस आदेश आद नील नद अनाहत जुग जुगे कोवेश एक दूजी बहु लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा खी है एक नाम जगदीश एतराहे पत पवड़िया चढ़िया हुए एकीस सुन गल्ला आकाश की गिटाई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुती ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खोहो कर्म केते पमन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट खड़ी है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते अंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाथ विनोद खोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै काड़त कड़ी है बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहि जे को कहै पिछै पछताए तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़ी है सुरा सिद्धा की सुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर

को मृतान को पूजन तहयो पूर क्रिया और जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आप हाथ दा मोहे बचाव हो। सुखी बसा मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करी सब बैरन कवाज संगरी। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्ह छाड़ कोई अबर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतरा हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे बरी है मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करी हो रक्षा। राख ले हो मोहे राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बेसन प्रकाशा सगल काल का किया तमासा। जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो। आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सगल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरा स्थूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना। जबद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जबा करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलता देह तर सब हूँ। जेते बदना श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचारा। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेदार आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील अनाद संभ। ताका मूड चारत भेदा जा को भेद न पावत बेदा। ताका कृपाहन अनुमानता महामूड कछ भेद न जानता। महादेव को कहत सदा सेवा निरंकार का चीनत नह पहवा। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज सेत जकीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाय चम पहव आद जुगाद स्वरूप सुयम पहव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुहज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सुपटारे। जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तुतकाला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाहा छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा।
ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ ਦੁਖ ਦੁਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭਰਾਤਾ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਖਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਅਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜਪ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ ਮਨ ਬਾਂਚ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਦੂਖਨਤ ਸਹਿ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਿਲ ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋਇ ਆਹੇ ਸੁਰਸ ਨ ਪਾਵਈ ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰਕੇ ਰਹੈ ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ਚੌਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰਾ ਹੈ ਸਹਿ ਸਪਣਿਜੈ ਅਰਧ ਸਹਿ ਸਫੁਨ ਤੀਨ ਕਿਹਜੈ ਭਾਦਰਵ ਸੁਰੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ ਤੀਰ ਸਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾ।

मत एक न मान्यो सिमरित शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे।

जब लो नहीं पाग लीला रूदा तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो

जब लाओ नहीं पावे लार उदय तब लाओ परमते फिरते बहुत आयो। कल कोर समुंदर में बूढ़ थे कबू मिठाय नहीं रे पछतायो। तत् विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन कर बनायो। ऐसे सतगुरु धन धन साहिब गुरु अर्जन पातशाह जी दे शहीदी पुरब।